0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. शुक्रवार 15 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजेरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम नजर डाल रहे हैं बजट पर विपक्ष का जवाब. जानेंगे कि बढ़ती महंगाई में किस चीज के दामों पर घर के बजट पर असर है हम सब पर. भारत की रिपोर्ट तो कार्यक्रम का हिस्सा होती ही है और इसके अलावा चलेंगे भारत के एक दर्शनीय स्थल की तरफ. कौन सा होगा वो स्थल, उसके बारे में कुछ आगे बात करती हूँ. अभी पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 15 मई के लिए यह न्यूज फ्लैश और मैं हूँ अनीता बरार. हंटर वायरस के जानलेवा प्रकोप की चपेट में आए क्रूज शिप पर सवार 6 लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. 4 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, एक परमानेंट रेसिडेंट और एक न्यूजीलैंडर आज दोपहर पर्थ के पास पियर्स रैफ बेस पर उतरे और अब बेस के पास एक खास तौर पर डिजाइन की गई जगह पर 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में हैं. एक नियो नाजी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में एंटी हेट कानून के तहत पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित होने वाला दूसरा ग्रुप बन गया है. गृह मंत्री टोनी बर्ग का कहना है कि उन्हें एक बैन ग्रुप के तौर पर लिस्ट करना एक गंभीर कदम है. इसे सिर्फ एजियो ही शुरू कर सकता है, जिसे ये यकीन दिलाना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा काम किया है जिससे हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा. ऑस्ट्रेलिया में नियोनाजी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट, नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क और वाइट ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो एक राजनीतिक पार्टी है. मंत्री का कहना है कि पिछले साल खत्म करने के प्लान की घोषणा के बावजूद अलग अलग नामों से सक्रियता जारी है. ईरान ने भारत में ब्रिक्स ग्रुप के देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान उनसे यूएस और इसराइल के हमले की निंदा करने की अपील की है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि तेहरान वाशिंगटन और इसराइल के गैर कानूनी हमलों का शिकार है. ब्रिक्स के बढ़े हुए ग्रुप में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. नई दिल्ली में हो रही बातचीत में मिडिल ईस्ट में संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग में रुकावटों की चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है. क्वींसलैंड में पुलिस का कहना है कि टूरिस्ट बस क्रैश के कारण के बारे में अभी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी. इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई. सुपरिटेंडेंट डीन कैवना का कहना है कि चार्टर बस ब्रूस हाईवे से उतर गई और क्रैश के दौरान पलट गई. 19 लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया और कम से कम एक को जानलेवा चोटें आई हैं. ऐसी खबरें हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी में डिफ्थीरिया से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है. इस साल की शुरुआत में इस बीमारी के फैलने की घोषणा की गई थी. सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल कांग्रेस के पब्लिक मेडिकल ऑफिसर जॉन बोफा ने एबीसी न्यूज़ को बताया कि ये मौत कुछ हफ्ते पहले एक दूर के इलाके में हुई थी. ऑस्ट्रेलिया में डिफ्थीरिया से आखिरी मौत 2018 में हुई थी और टेरिटरी में अभी जो फैल रहा है वो 1990 के दशक के बाद पहली बार है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी मामले सामने आए हैं. और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दावा किया है कि पेपर एनटीए के अंदर से लीक हुआ है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि पेपर लीक की कड़ी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अंदर तक जाती है। सीबीआई को करोड़ों के सौदे के डिजिटल सबूत मिले हैं। जांच से असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश जारी है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और शुरू न्यूज फ्लैश के बाद अब भारत से हमारे संवाददाता विश्व रत्न के साथ भारत से ये रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। गुरुवार से शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। अपने शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने वैश्विक हालात के मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
3: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
2: Shanti aur suraksha ki vakalat karte hue S. Jaishankar ne kaha,
3: Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक में भाग ले रहे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करने की वकालत की। आज बैठक का आखिरी दिन है। इधर प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आज इस यात्रा का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात होगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर चले जाएंगे। जहां कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल खड़ा करती रही है, तो भाजपा राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठा रही है। गुरुवार को भाजपा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दौरे की फंडिंग पर सवाल खड़ा किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा इन यात्राओं के बारे में कहते हैं,
4: एलओपी के ऊपर एक बहुत गंभीर प्रश्न को छोड़ता है, उनके व्यवहार, उनका आचार। जो व्यक्ति भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उस व्यक्ति का आचार, कौन उनको बुला रहा है, किस उद्देश्य से वो ओमान गए, वहां वो किससे मिले, देश के विरोध में उन्होंने क्या बातें की, क्या षड्यंत्र उन्होंने रचा। ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार छोड़ देगी। ये नया भारत है, चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, एक एक चीज की गिनती और हिसाब हो रहा है। आज तो हमने एक छोटा सा लेजर जारी किया है, मगर कागजों की भरमार है और तथ्यों की भरमार है, छोड़ा नहीं जाएगा।
2: इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसे भाजपा की कुंठा कहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अनर्गल आरोप लगा रही है। वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। सोमवार से वे राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बड़ी बहुमत हासिल हुई थी, लेकिन विधायक दल का नेता चुनने में कांग्रेस पार्टी को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गुरुवार को आखिरकार सतीशन के पक्ष में यह घोषणा हो गई। कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी इस बारे में कहती हैं,
5: द कांग्रेस प्रेसिडेंट has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have all also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Sri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP.
2: भारत ने ओमान तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक बयान में कहा कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि बुधवार को जहाज पर हमला हुआ था, इसमें सवार सभी 14 सदस्यों को बचा लिया गया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने इस बारे में बताया।
6: That is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba Port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian Mission officials and relevant maritime agencies.
2: आज की सुबह आम जनता को महंगाई का जोर का झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 3-3 रुपए के लगभग वृद्धि की है, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। महंगाई के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वैसे पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए सरकार पिछले कुछ दिनों से लोगों से आग्रह कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल कम उपयोग करने को कहा था। कई मंत्रियों और राज्य सरकारों ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं। मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन के तहत दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बारे में कहती हैं।
7: ईंधन बचाने के लिए प्लेज होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए प्लेज होगा, अननेसेसरी जो व्हीकल यूज है, पर्सनल प्राइवेट व्हीकल जो यूज है उसका काम करने के लिए प्लेज होगा। इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा, उसमें कार पूल हो, कार शेयरिंग हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, इस पे सरकार मैक्सिमम काम करेगी, इसको बेहतरीन व्यवस्थाएं दिल्ली राज्य को देने के लिए काम करेगी।
2: आपको बता दें कि विपक्षी दल पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पहले से ही सरकार पर हमलावर हैं। इसके पहले एलपीजी सिलेंडरों के दामों में भी वृद्धि की गई थी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
1: श्रोताओं, भारत से आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे। और जानते हैं ना कि ये सप्ताह जो है वो नेशनल फैमिलीज वीक है ऑस्ट्रेलिया में। आज यानी 15 मई का दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए इस दिन का क्या महत्व है अवश्य लिखिएगा मुझे 0439-799-767 पर, और मैं आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।
8: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
9: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
8: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ। जो आपके लिए मायने रखती है ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से। देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
10: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
11: I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
12: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे कि बढ़ती महंगाई में वो क्या है जो घरेलू बजट पर खासा असर डाल रहा है, और भारत की एक जगह के बारे में भी जानेंगे जिसे कहते हैं अरब सागर का मोती। कौन सी होगी वो जगह, आप मुझे लिखिएगा 0439799776 पर कि भारत में किस जगह को अरब सागर का मोती मानते हैं। और अभी बात करते हैं बजट पर, यानी विपक्ष के नेता द्वारा इस पर क्या जवाब दिया गया और क्या क्या ऐलान किए गए। तो आइए जानते हैं विस्तार में इन सब के बारे में। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रही हैं स्वाति शर्मा।
13: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। संसद में अपना पहला बजट रिप्लाई पेश करते हुए ऑपोजिशन लीडर एंगस टेलर ने हाउसिंग, माइग्रेशन और टैक्स पर फोकस किया, और सबसे बड़ा ऐलान था माइग्रेशन को सीधे हाउसिंग से जोड़ना।
14: फर्स्ट, मैस माइग्रेशन इज चेंजिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर द वर्स। द नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन फार एक्सीड्स द नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट। कॉन्सिक्वेंटली, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ड्रीम ऑफ होम ओनरशिप इज वैनिशिंग फॉर ओल्ड And new Australians alike.
13: कोलिशन के प्रस्ताव के मुताबिक हर साल जितने नए घर बनेंगे उतनी ही होगी नेट ओवरसीज माइग्रेशन की सीमा।
14: Tonight, I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy that puts Australians first. A coalition will cap immigration numbers based on the number of homes constructed each year. Never again will a government be able to bring in more people than our housing can support.
13: यह ऐलान भारतीय समुदाय के लिए सीधे मायने रखता है, जो अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विदेश में जन्मा समूह बन चुका है। टेम्परेरी माइग्रेशन के मामले में एंगस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सख्त नियमों का ऐलान किया है और स्किल्ड वीजा कैटेगरी को प्राथमिकता देने की बात कही है। भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट समूहों में से एक हैं, इसलिए इन बदलावों का सीधा असर भारत से आने वाले छात्रों पर पड़ सकता है। माइग्रेशन में और भी बदलाव प्रस्तावित हैं, जैसे कि वीजा होल्डर्स के लिए ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज स्टेटमेंट का पालन करना अनिवार्य होगा, ना करने पर वीजा कैंसिल हो सकता है। एक सेफ कंट्री लिस्ट भी बनेगी, जिसके आधार पर कुछ देशों से आने वाले प्रोटेक्शन क्लेम्स जल्दी खारिज किए जा सकेंगे। हाउसिंग और टैक्स के मोर्चे पर कोलिशन ने लेबर सरकार के कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग में किए गए बदलावों को पलटने का वादा किया है। ये बदलाव उन परिवारों के लिए अहम हैं जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में हिस्सेदारी रखते हैं। साथ ही $5 बिलियन का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने और इनकम टैक्स को महंगाई से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों के व्यापक असर को समझने के लिए हमने बात की चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राकेश गुप्ता से। प्रोफेसर गुप्ता समझाते हैं कि इन प्रस्तावों का वास्तव में क्या असर देखने को मिल सकता है।
15: इसमें तीन जो है बहुत ही अहम प्रस्ताव जैसे उन्होंने रखे हैं। एक तो जो है इसको जो हमारा इनकम टैक्स है उसको महंगाई से जोड़ना, वो इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही चीज है, परंतु अगर उसको हम इसमें जो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो जो है 2028-29 से शुरू हो रहे हैं, तो उसका जो है इमीडिएट रिलीफ जो कि आज बात हो रही है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की, उसके लिए जो है इमीडिएट रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, उसकी जो कॉस्ट है $22.5 बिलियन, वो जो है अभी तक हमने कॉस्ट नहीं किया, क्योंकि जो है जो नॉर्मली जब अपोजिशन अपना जो है प्रस्ताव रखता है तो वो उसके अंदर जो है कॉस्टिंग नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको कॉस्टिंग तब तक मिली नहीं होती। तो वो जो है पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।
13: तो
15: दूसरा प्रस्ताव
13: जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी कंटिन्यू।
15: दूसरा प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है वो रखा है कि हम जो है अपना ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग है उसको हम पलट देंगे। अगेन जब ये कैपिटल गेन्स और नेगेटिव गियरिंग जब आई थी उस वक्त जो है उस वक्त की जो सरकार का जो विचार था वो था अलग से कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। आज के जो है कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखते हैं तो उसका विचार अलग है। तो वो जो है एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है जो कि बहुत से लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जिनके इन्वेस्टमेंट्स है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको, या जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है। परंतु इसका जो वाइडर इम्पैक्ट है कि इससे जो है रेंट कम हो जाएगा या इससे जो है अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो बढ़ने की उम्मीद जो है इमीडिएट उसमें नहीं है। और जो तीसरा उनका प्रस्ताव है जो वो है कि माइग्रेशन को हम जो है हाउसिंग से लिंक करेंगे, वो पॉलिटिकली बहुत अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। बट अगेन उसका जो है इम्पैक्ट आएगा या नहीं, क्योंकि जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है या हाउसिंग स्टॉक है वो डिपेंडेंट है बाकी चीज़ों पे, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्लानिंग रूल्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है। सो उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउसिंग कितनी बिल्ड होती है। जबकि पॉलिटिकली बहुत ही अट्रैक्टिव है कि अगर घर नहीं है तो हम आने नहीं देंगे लोगों को।
13: वेलफेयर पर भी कोलिशन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो नॉन सिटीजन्स जिनमें परमानेंट रेजिडेंट्स भी शामिल हैं NDIS सहित 17 अन्य वेलफेयर पेमेंट्स के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
14: Tonight, I announce that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance, and the Family Tax Benefit for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this: if you commit to Australia, Australia will commit to you.
13: जॉब सीकर, यूथ अलाउंस, फैमिली टैक्स बेनिफिट्स, ये वो पेमेंट्स हैं जिन पर हजारों प्रवासी परिवार PR पर रहते हुए निर्भर रहते हैं। ग्रीन सेनेटर महरीन फारूकी ने इस ऐलान की तीखी आलोचना की है।
16: It is pathetic that the liberals are willing to sink so low trying to out-racist one nation. Newsflash for Angus Taylor, migrants are entitled to the same safety net as everyone else. Migrants are feeling the same housing crisis, the same cost of living crisis, the same wage crisis as everyone else, caused by Labour and the Liberals' embrace of Trump's forever war and their unwillingness, their complete unwillingness to tax the rich, to properly fund social services and public housing.
13: Assistant Minister for Citizenship Julian Hill ne SBS se kaha ki is prastav mein koi dam nahi hai.
17: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to one nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition to explain, have they really thought through the potential consequences of this? For example, for Australians living in New Zealand or other countries, what happens when other countries say, okay, well, we'll start treating Australian citizens who've been living and working and paying taxes in our country and take away their family payments and benefits?
13: विपक्ष के इस बजट रिप्लाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रेजरर जिम चार्मर्स का कहना है कि एंगस टेलर ने जो पेश किया है वह एक गंभीर आर्थिक योजना नहीं है।
18: Now, ours is a plan to strengthen the economy. Angus Taylor's is a ploy to stave off one nation. What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division. Angus Taylor's recipe is for higher inflation, bigger deficits, more debt and more division in our society. Now, he was asked last night, immediately after giving this speech, how much would his tax plan cost, and he couldn't say. Now, he won't tell you what he needs to cut to pay for his policies because he can't tell you how much it costs.
13: माइग्रेशन कैप, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नए नियम, परमानेंट रेजिडेंट्स की वेलफेयर तक पहुंच और प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी टैक्स नीतियां, तो कुल मिलाकर भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुदाय के लिए ये प्रस्ताव कई स्तरों पर अहम है। आपका इन प्रस्तावों के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं अपने विचार 0439-799-767 पर। SBS न्यूज से सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने, धन्यवाद। इस अंश में प्रस्तुत विचार व्यक्ति विशेष के हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
1: तो आप सुन रहे थे ये रिपोर्ट कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने जो ऐलान किए हैं उसका असर प्रवासी समुदायों पर क्या पड़ेगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अवश्य हमें बताएं 0439-799-767 पर। इसके अलावा आप ये भी हमें बताएं कि भारत में वो कौन सी जगह है जिसे अरब सागर का मोती कहा जाता है। आपके संदेशों की मुझे प्रतीक्षा है और अब एक समय हुआ है तो एक छोटे से अंतराल का, मिलती हूँ इसके बाद में।
8: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
10: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
8: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
9: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
11: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS audio app, website or SBS on demand.
8: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
0: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
9: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आगे बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की, एक द्वीप है भारत का, एक द्वीप जिसे अरब सागर का मोती कहा जाता है। तो आप सोचिए कि वो द्वीप कौन सा है, उसके बारे में हमें अवश्य लिखें। वैसे हमारे श्रोता ब्रिस्बेन से कैलाश जी ने तो अपना उत्तर हमें लिख भेजा है। चाहूँगी कि आप भी इसके बारे में सोचें और हमें लिखें। और इस अंतराल से पहले आप एक रिपोर्ट सुन रहे थे जिसमें विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने कुछ बड़ी बड़ी घोषणाओं की जो बात की है उसका प्रवासी समुदायों पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में आपने जो रिपोर्ट सुनी उस पर भी आपके क्या विचार हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए बात करते हैं कि ये जो महंगाई हुई है, बढ़ती लागत का जो ये दौर है, उसमें दूध जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ भी महंगी हो गई है। अब सुपर मार्केट्स में जो होम ब्रांड दूध है उसकी कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जिससे कहा किसानों को और मिल्क प्रोसेसर्स को सहयोग देने की वजह से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इसका असर ग्राहकों पर, घरेलू बजट पर, किसानों पर क्या पड़ेगा। तो इन्हीं पहलुओं को समझते हुए एक रिपोर्ट है जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन, सुनिए ये रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ एक गाना सुनते चलते हैं। गाना किस लिए? क्योंकि आज है परिवार दिवस, नेशनल फैमिलीज डे, जो यूएन की तरफ से, और ये पूरा सप्ताह जो है वो नेशनल फैमिलीज वीक है। तो सोचा कि पहले परिवार की बात करते चलें, ये गाना सुनते चलते हैं।

0: तो श्रोताओं, ये गाना हम सुन रहे थे और उसके साथ हम इस दिन को भी याद कर रहे हैं, यानी जो खास तौर से परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवारों को एक दूसरे से जुड़ने और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने का ये अवसर है। और ये भी है कि बच्चों के पालन पोषण, सहयोग और समाज में परिवार की क्या भूमिका होती है, इसको पहचानते हुए इस दिन को हम मनाते हैं। अब जब पालन पोषण और बच्चों के सहयोग और समाज की बात आती है तो उसमें महंगाई की बात तो आ ही जाती है, जिसकी बात मैं अभी इस गाने से पहले कर ही रही थी। तो कई चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं। सुपरमार्केट में होम ब्रांड दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तो आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में कि इसका घरेलू बजट पर क्या असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
1: दूध जो हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन जब इसी जरूरी चीज की कीमत बढ़ती है तो असर सिर्फ रसोई के बजट पर नहीं बल्कि खेतों और डेयरी उद्योग तक भी पहुंचता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े सुपरमार्केट्स में होम ब्रांड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर 3 लीटर मिल्क कैन, जिसकी कीमत पहले लगभग $4.50 थी, अब बढ़कर $5 के ऊपर पहुंच गई है। कंपनियों का कहना है कि ये कदम डेयरी फार्मर्स और मिल्क प्रोसेसर्स को बढ़ती लागत के दौर में सहयोग देने के लिए उठाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बढ़ी हुई कीमत ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ है या किसानों के लिए राहत, और इसका डेयरी सेक्टर के भविष्य पर क्या असर हो सकता है। इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम इस रिपोर्ट में नजर डालेंगे। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। इस मुद्दे पर SBS हिंदी ने वूलवर्थ से संपर्क किया। उनके जवाब का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है।
2: हम जानते हैं कि बढ़ती लागत का दबाव कई ऑस्ट्रेलियाई किसानों और सप्लायर्स को प्रभावित कर रहा है, जो ईंधन, उर्वरक और पैकेजिंग जैसे बढ़े हुए खर्चों का सामना कर रहे हैं। हमारे डेयरी किसानों को बढ़ती लागत से निपटने में मदद करने के लिए हम सीधे स्रोत से जुड़े किसानों को हमारी तय दूध खरीद कीमत के अतिरिक्त लगभग 5 सेंट प्रति लीटर का अस्थायी अतिरिक्त भुगतान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आने वाले सप्ताह में सीधे स्रोत से जुड़े किसानों को एक मुश्त राहत भुगतान के रूप में कुल $10 लाख की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। ये अब से अप्रैल के अंत तक सप्लाई की गई मात्रा पर 5 सेंट प्रति लीटर से अधिक के बराबर है। हमें ऑस्ट्रेलियाई किसानों का समर्थन करने पर गर्व है और हम इस उद्योग के बेहतर भविष्य में निवेश कर रहे हैं।
1: हमने कोल से भी

0: कि हमारे सप्लायर्स, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई किसान और ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स शामिल हैं, बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं और हम उनके साथ मिलकर इन दबावों को संभालने पर काम कर रहे हैं। मिल्क प्रोसेसर्स की ओर से ईंधन, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स और पैकेजिंग की बढ़ती कीमत लागत को लेकर सहयोग की मांग के जवाब में हमने वूलवर्थ्स ओन ब्रांड मिल्क की रिटेल प्राइस बढ़ाई है, ताकि इसका लाभ मिल्क प्रोसेसर्स और उनसे जुड़े डेयरी किसानों तक पहुंच सके। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारा ध्यान सही संतुलन बनाए रखने पर है, ताकि किराने का सामान ग्राहकों के लिए किफायती रहे और हमारे सप्लायर्स भी अपना काम जारी रख सकें।
1: आइए अब आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे को बेहतर समझते हैं और बात करते हैं बिपिन शर्मा से। डेयरी और फूड इंडस्ट्री से जुड़े बिपिन जी, हाल ही में कई सुपरमार्केट्स में होम ब्रांड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किसानों और मिल्क प्रोसेसर्स पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर अपनी राय साझा कर रहे हैं।
2: आई एम हैप्पी कि अगर आप बोल रहे हैं कि इसका जो डायरेक्ट जो भी है जो प्राइसिंग है वो फार्मर्स को जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इन माय ओपिनियन की जो डेयरी फार्मर्स है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मिल्क प्राइसिंग की वजह से। तो आज की डेट के अंदर जो फार्म गेट प्राइस है 120 to 130 डॉलर में वेरी करता है फार्म गेट से, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप देखिए कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके भी जाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, फिर वो प्रोसेस करेंगे, फिर उसको बॉटल करेंगे। तो मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता 450 में कैसे मैनेज करते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट आई थिंक मैं मतलब हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है सर, एनर्जी, बट दिस वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू आई थिंक कि जो है होम ब्रांड का जो मिल्क का प्राइस है ओवरली सब्सिडाइज है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजंस, मैं इसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा कि पर, लेकिन मैंने आपको मैथ्स बता दिया कि इट डजेंट मेक एनी सेंस, क्यों नहीं कि कैसे हो सकता है। अलॉन्ग द चेन सबने पैसा बनाना है, सबना पैकेजिंग का कॉस्ट है, अगर सारा कुछ आप ऐड करेंगे तो दैट यू नो डजंट ऐड अप। तो ठीक है, तो आई थिंक बिकॉज फार्मर्स के लिए भी देखिए ना, सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, फिर आपका डीजल की कॉस्ट इज गॉन वेरी हाई। बट अगर आप कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट्स को देखें, जो कि हम और प्रोडक्ट्स भी हैं जो कंज्यूम करते हैं, कंपैरेटिवली मिल्क प्राइसेस हैडन्ट मूव दैट मच इन माय ओपिनियन।
1: विपिन जी, आज के समय में डेयरी और फूड बिजनेस के लिए जो राइजिंग कॉस्ट हैं, जैसे फ्यूल, पैकेजिंग और दूसरे खर्चे, इनको मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है?
2: हाँ जी, हाँ जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है और इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इनको कैसे प्राइस को पास ऑन करें आगे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि कंज्यूमर को भी पिंच होता है फिर आगे जो है ना। सो आई थिंक एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ सफरिंग अलोंग द चेन, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो उसको सस्टेन करने में लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि द वे द एनर्जी प्राइसेस आर आप देख ही रहे हैं, तो दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग अलोंग द लाइन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर सैलरीज भी होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं, सो एवरीथिंग अफेक्ट्स, यू नो दैट्स द रीजन, यू नो द प्राइसेस वेयर दे आर। और अभी भी जितने भी मुझे लगता है स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, वो उन्होंने प्राइस रीजनेबली होल्ड करा हुआ है, बट अदरवाइज कॉस्ट हैव गॉन कंपैरेटिवली लॉट हायर।
1: अच्छा, कस्टमर्स के नजरिए से देखें तो क्या लगता है आपको कि इस प्राइस राइज का उनके डेली कंजम्पशन पर भी कोई असर दिख सकता है?
2: सर वो दिखेगा ही, क्योंकि देखिए ना, वो जो फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है मिल्क, उसकी भी तो कॉस्ट ऊपर गई है। एज इट इज मैं बता रहा हूँ कि जो फूड जो मिल्क का प्राइसिंग है, दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी रीजनेबल कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, चाहे आप पानी ले लें, विस्की ले लें, बियर ले लें, कॉफी ले लें, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, देयर हैज बीन लॉट मोर इंक्रीज। मिल्क में मूवमेंट बहुत कम है। आई डोंट नो, एवरीवन, हर आदमी जो है मिल्क प्राइस को देखता है बिकॉज इट्स डेली कंज्यूम्ड। तो अगर आप देखें स्टैटिस्टिक देखें, कितने फार्मर्स जो हैं दे आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, यू नो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस फार्मिंग, दे आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर स्ट्रगलिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड ये, आई डोंट थिंक सो फार्मर्स हैव बीन प्लेइंग एनी रोल इन इंक्रीजिंग दिस प्राइसिंग, दे हैव बीन ऑलवेज बीन स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ।
1: ऐसे समय में आपके कई देशों के अनुभव को देखते हुए, क्या ऐसे कोई सुझाव हैं जिनसे फार्मर्स या डेयरी इंडस्ट्री को और मदद मिल सकती है?
2: देखिए, मैं इतना तो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बोल सकता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट ये है कि फार्मर्स, देखिए आपको मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया में आप जाइए, क्योंकि मैं भी वहीं पे, मैंने अभी फैक्ट्री खोली है, वहाँ पर जो फार्म गेट प्राइसिंग है 60 रुपये है पर लीटर, ठीक है। तो वहां पे बिकॉज बफलो मिल्क है फैट ज्यादा होता है, तो आपको 5 लीटर में एक जो है

0: किलो पनीर बनता है, ठीक है, तो वो उसका घर में जो आपका दूध का कॉस्टिंग है 300 रुपए आया, और वहां पर लोग 300 रुपए किलो पनीर बेच देते हैं, और वही फिर लोग कंप्लेन करते हैं यार बहुत अडल्ट्रेशन है, अच्छा नहीं मिल रहा है या ये नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने क्वालिटी मेंटेन करना है तो कुछ है तो वी हैव टू सी कि अभी किसका कितना कॉस्टिंग होता है, कैसे होता है, तो जो भी प्राइसिंग है रीजनेबल है, दे आर नॉट लाइक ओवर द टॉप इन माय ओपिनियन। जैसे अब यहाँ पर तो बड़े स्टैंडर्ड्स आए हैं, एवरीथिंग इज वॉश प्रॉपरली, हर बंदा कोई हेरा फेरी का सिस्टम नहीं है यहाँ पर, और आई थिंक कि जो मिल्क का प्राइसिंग है वो मेरे हिसाब से तो अभी तक ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। हुआ है बाकी कॉस्ट में हुआ है, पैकेजिंग में ज़्यादा बल्कि हमें प्रॉब्लम हुई है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हुई है, तो मिल्क प्राइस इज स्टेइंग ऑलमोस्ट ओके, बट उसके जो मिल्क प्राइसिंग को आप होम ब्रांड से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि होम ब्रांड पहले ही बहुत सस्ता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसको बेच पा रहे हैं ये जो सुपरमार्केट्स हैं, हाउ दे आर एबल टू सेल दैट। या तो उनका पॉलिसी होगा कि मिल्क को हम सब्सिडाइज करते हैं, बाकी चीज़ों में पैसा बनाते हैं, सो आई रियली डोंट नो, वो उनका यू नो दैट्स हाउ दे ऑपरेट, आई डोंट नो हाउ दे ऑपरेट।
1: तो ये थे विपिन शर्मा, जिन्होंने हमें इस मुद्दे पर अपनी राय दी, बढ़ती कीमतों, किसानों की चुनौतियों और ग्राहकों पर असर के बीच ये बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है। SBS हिंदी पर ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
2: तो श्रोताओं, क्या आपके लिए भी महंगा दूध परेशानी का कारण है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और बताती चलूं कि हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पीयूष जी, और उन्होंने जवाब भी लिख भेजा है कि अरब सागर का मोती कौन सा द्वीप है। हम द्वीप की बात कर रहे हैं, द्वीप समूह की नहीं। तो ये दूसरे श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहती थी। और परिवार दिवस पर उन्होंने अपनी पसंद भी लिख भेजी है। तो पीयूष जी, आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, देखिए अगर संभव होगा तो आपकी पसंद अवश्य शामिल करूंगी, नहीं तो कल यानी शनिवार के कार्यक्रम में उसको शामिल करूंगी। ये पूरा सप्ताह ही परिवार के लिए समर्पित है। और बात करते हैं आगे कि कौन सी जगह है, लेकिन अभी समय हुआ है अंतराल का।
3: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए, सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त, या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
4: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है, एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
5: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
3: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
5: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
6: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे नई अनुभूतियों से हमारे मन पर नए रंगों के चित्र बन जाते हैं। नए लोग, नई जगह, नई संस्कृतियाँ। कभी प्राचीन इमारतों को देखना, विरासत और संस्कृति से जुड़ना, कभी पहाड़ों की मौन ऊंचाइयों में या समुद्र की लहरों के संगीत में डूब जाना। यानी हर जगह की अपनी छाप बनती है हमारे मन पर। तो आइए आज जानते हैं भारत के एक और स्थल के बारे में। हो सकता है कि आप वहां गए हों या फिर कभी जाने का अवसर मिले। तो आइए चलते हैं दीव की तरफ। दीव यानी सूर्य, रेत और समुद्र का संगम। लहलहाते खजूर के पेड़ और अरब सागर की बलखाती लहरें बस इस द्वीप की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। सौराष्ट्र प्रायद्वीप में जूनागढ़ के पास किसी जमाने में पुर्तगालियों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। नाम था दीव। और अब केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, जो आज है एक अनोखा पर्यटन स्थल। ये एक खाड़ी से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। दीव के उत्तर में चासी नदी है, जबकि बाकी तीन ओर अरब सागर है। दो पुल इसे मुख्य भूमि से जोड़ते हैं। ऐतिहासिक विवरण में कहा जाता है कि दीव का पहला शासक एक राजपूत था जिसका नाम जालंधर था, लेकिन 1380 में हमलावरों ने इस पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर है एक किला जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस किले का निर्माण 1535 और 1541 के बीच में एक रक्षा समझौते के बाद हुआ। बताया जाता है कि मुगल राजा हुमायूं ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह पर हमला किया, तो ये समझौता बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच में हुआ। किले की स्थिति और बनावट से उन शासकों की रणनीतिक चतुराई का पता चलता है। किला एक ऐसी चट्टान की तरह है जिस पर हमला करना मुश्किल था। ये तीन तरफ से तो समुद्र से घिरा है और एक ओर जब ये भूमि से जुड़ता है उस पर भी एक खाई बनती है। 16वीं शताब्दी में समुद्र यात्राओं में यूरोप के देश पूर्व में व्यापार की संभावनाएं तो तलाश कर ही रहे थे। इन्हीं देशों में पुर्तगाल भी शामिल था और वहां के व्यापारी 1510 में दीव आए थे, लेकिन ये पूरी तरह से पुर्तगाली शासन के अंदर 1543 में ही आया। 1945 में किले का पुनर्निर्माण किया। किले के प्राचीर पर कांसे और लोहे की पुर्तगाली तोपें आज भी लगी हुई हैं। किले के कोनों में इस्तेमाल नहीं किए गए गोले अभी भी पड़े हुए हैं और किले की चार दीवारी के अंदर दो दीप स्तंभ भी बने हुए हैं। चूंकि यहाँ पर पुर्तगालियों का राज हो गया तो पुर्तगालियों ने एक गिरजाघर का निर्माण भी किया जो सेंट जेम्स को समर्पित है और किले की दीवार से सटा हुआ है। पुर्तगाली किले की सुरक्षा को लेकर संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने समुद्र के बीच में एक चौकी और चट्टानी ढांचे पर लाइट हाउस का निर्माण भी कराया। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो इसे पानी कोठा कहते हैं। दीव से पानी कोठा तक पहुंचा भी जा सकता है मोटरबोट से। सूर्यास्त के समय पर पानी कोठा से जो दीव का किला दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि एक ओर सूरज समुद्र में डूब रहा होता है तो पानी कोठा रोशनी से जगमगा उठता है। ये एक वो दृश्य है जिसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। अच्छा, पुर्तगाल की संस्कृति का प्रभाव दीव के जीवन में कई पहलुओं में दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर राजस्थानी और मुस्लिम प्रभाव भी देखा जा सकता है। यहाँ का जो जलंधर नाथ का मंदिर है वो राजपूत शासक को समर्पित सबसे पुराना मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर गुजराती शैली में नगर सेठों की हवेलियाँ हैं। जामा मस्जिद भी है जो पुर्तगालियों के आने से पहले की संस्कृति की याद दिलाती है। अब दीव की जो गलियाँ हैं और सड़कें हैं वो यूरोप के किसी कस्बे की तरह लगती हैं। असल में यहाँ पर पुर्तगाली और गुजराती वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप है। वैसे जिन इमारतों को यहाँ यानी द्वीप का गौरव कहा जा सकता है उसमें है सेंट पॉल और सेंट थॉमस गिरजाघर की इमारतें और सेंट फ्रांसिस असीसी के गिरजाघर का टावर। गॉथिक शैली में सेंट पॉल गिरजाघर का निर्माण 1610 में किया गया और आवर लेडी ऑफ इमैक्यूलेट कॉन्सेप्शन के नाम से विधिवत रूप से उपासना के लिए इसे खोला गया। नायडा गुफाएं भी द्वीप का एक प्रमुख आकर्षण है। ये गुफाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न चित्रों और नक्काशियों के साथ मानव सभ्यता के विकास के युगों की कहानी लिखी गई है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल में द्वीप पर कई राजाओं और राजवंशों ने शासन किया। बाद में ये पुर्तगाली कॉलोनी बन गया और 1961 में इसे गोवा के साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। उसके बाद में 1987 में इस द्वीप को गोवा से अलग कर दिया गया। और दीव का मुख्य उद्योग है नमक बनाना और मछली पकड़ने का काम। अब दीव की बात करें और वहां पर बीचेस की बात ना हो तो लगेगा कि दीव की बात अधूरी रह गई। जलंधर बीच, चक्रतीर्थ बीच, गोमतीमाला बीच और नागोवा। नागोवा का बीच घोड़े की नाल की तरह का बना हुआ है और इसकी गिनती भारत के सबसे सुंदर समुद्र तटों में होती है। ये शांत पानी वाली नीली खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर लोग स्विमिंग के लिए भी आते हैं। यानी दीव में वो सब उपलब्ध है जिसकी पर्यटकों को तलाश रहती है। अपने शांत और सुकून भरे माहौल की वजह से ये बहुत ही मनमोहक सी जगह है और तभी इसे अरब सागर का मोती कहते हैं। तो श्रोताओं, द्वीप के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे अवश्य बताइएगा। और चूंकि परिवार दिवस की बात है तो आइए कुछ परिवार को समर्पित ये गाना सुनते चलें। आपको तो याद ही है ना कि पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस है जो ख़ास तौर से जाना जाता है। याद है आपको वो प्रोडक्शन हाउस? लिख भेजिएगा मुझे।

जी, और जब परिवार साथ में होता है तो खुशियों का जो माहौल बनता है उसकी तो बात ही अलग है। आप भी अपने परिवार के साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ बढ़ते ही हैं, तो आइए क्यों ना परिवार के साथ मिलकर कुछ ऐसा ही करते चले।

0: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.
2: जोगी आवे मैनू इत्थों दूर.

0: हमारे बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद. खाना खाके जाइएगा.
1: Your news from here
2: and hits from home. SBS South Asian.

जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। अमीरों वाला ख्वाब चाटो इनकी धूल, दिखने में सुंदर ये कांटे वाले फूल।

चुप क्योंकि अमीरों की इजी बेल, अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल। गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल। मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेटफुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल। अकेला ही करूँगा मैं सारा वेकफुल, याद रखना I'm the one and only big bull।

से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय

इख्तियार जैसी होशियारी फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से।

0: ठोकरें खा खा पता चला फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: Weekend vibes. Your weekend party mix. Desi Dance Party on SBS South Asian.

जैसे मैं रणवीर सिंह पिंग कहां कहां करूं मुझे बता दे तुझे खुश रखूंगा लाइफ टाइम मेरा ये वादा बेबी जितना मुझे प्यार है दिल्ली के मोमो से उतना तुझसे प्यार

जैसे मैं खेल रहा लुका छुपी और छुप गया मार्स पे और मुझे कोई देख नहीं रहा। ये चोरी किया मैंने रानी हार को बनके मिस्टर इंडिया और मुझे कोई देख नहीं रहा। टेंशन सारी छोड़ दी ओए, आज कमी ना हो शोर की ओए, हाँ मुझे डांस आया आया बड़ी जोर से आज।

प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं ऐसे तड़पाए क्यों ईगो तो दिखाए क्यों मछले है जैसे कुनकन की मछली स्टाइल झूठा है तेवर

अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो,
1: कुछ भी करा रहा हमसे कहना, यहाँ के डाउन है।